भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिटी 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी ज्वाइँहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाइँ नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजु अदिति पलातिनीहरू आर्य र आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजु भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार लमजुङ।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगर पालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिति 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौ। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी ज्वाइँहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाइँ नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजू अदिति पलातिनीहरू आर्य आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजु भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार लमजुङ।

0: मॉड्यूलर किचन, दराज, पलांग, फोल्डिंग पलांग, लोबे, सोफा, डाइनिंग टेबल, किचन रैक, कुर्सी टेबल लगायत फर्नीचर का हरेक सामग्री आधुनिक डिजाइन में अर्डर अनुसार तैयार गरिनुका साथै सुपथ मूल्य में तैयारी फर्नीचर का सामान पाइन्छ। अफिस डेकोरेशन, किचन डेकोरेशन र इंटीरियर डेकोरेशन का लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। मोडर्न फर्नीचर उद्योग बेचिसार नगरपालिका 8 भीमसेन स्थान टोल विद्या विकास रानी बाटो लमजुङ प्रोप्राइटर विवश बुढा थोकी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98560 45779।
1: शान्ति र विकासको लागि हाम्रो आवाज रेडियो चौतारी 91.4 MHz।
2: तिमी त मेरो प्राण हो नि मैया, तिमी बिना जिन्दगी कहाँ चल्छ र?
3: चिनी भए नि हामी एक हुन सक्दैनौ के रे?
2: ल किन के रे खेक्छ र?

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगर पालिक सात भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिति 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी ज्वाइँहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाती नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाइँ नाती अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजु अदिति पलातिनीहरू आर्य आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजू भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका सात भलुवाटार लमजुङ।